0: तेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे सुजला
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अब सुनिए अनजान का लिखा गीत। फिल्म है महान। आवाज़ें आरडी बर्मन आशा भोसले और साथियों की।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। जयमाला के शेष गीत इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RKLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Join the noble profession of nursing, where every day brings the opportunity to make a difference.
2: GNM, ANM, paramedical, BSc nursing, lab technician जैसे courses के लिए आज ही join करें Chandni School of Nursing and Chandni College of Nursing, Vikas Nagar, Kanpur.
3: सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको टर्मरिक, हल्दी चंदन के गुणों से भरी सुंदर निरोगी त्वचा के लिए।
4: सुनिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी फरमाइश, आ रहा है अब एक नए वक्त पर। अब आप अपनी फरमाइशें और सदाबहार गाने एंजॉय करें हर रात 9 बजे से 10 बजे तक। जी हाँ, रात 9 से 10 बजे तक सिर्फ 103.7 FM विविध भारती कानपुर पर। तो लिख भेजिए हमें अपनी रिक्वेस्ट, अपनी फरमाइश। लिखिए अपना नाम व पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं आकाशवाणी कानपुर के नाम से। हमारा टेक्स्ट हैंडल है @AIR कानपुर और मेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com। अपनी फरमाइशें आप हमें चिट्ठियों के माध्यम से भी भेज सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता नोट करें, द्वारा केंद्र निदेशक विविध भारती सेवा आकाशवाणी कानपुर 208002। तो जल्दी से लिख भेजिए अपना फरमाइशी गाना इसी पते पर।
5: रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक विको वज्रदंती।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हे भगवान, हर एक नट पर एक नई आवाज।
1: उहा, उहा, उहा।
0: ओह ऑलमाइटी, बस एक अदद फरियाद है, किसी को कंपाउंडर कभी मत बनाना, और बनाए बिना ना चले तो मैटरनिटी होम का बिल्कुल मत बनाना।
1: उहा, उहा, उहा, उहा।
2: जोसेफ।
3: यस डॉक्टर।
2: तुम अभी गया नहीं रोजी के पास?
3: रोजी? अभी जाता हूँ, ये चला वो चला।
2: देखो, साथ लेकर आने का मैं अंदर है।
3: राइट डॉक्टर, साथ लेकर आने का मैं अंदर है। ओह रोजी, आई एम कमिंग रोजी, रोजी।
4: डॉक्टर साहब अंदर हैं क्या?
0: हाँ जी डॉक्टर साहब हैं, बिल्कुल हैं। बैठिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी आया। ये गया, वो आया, वो गया, ये आया।
5: गुड मॉर्निंग कंपाउंडर साहब, आप बड़े जल्दी में हैं क्या?
0: बिल्कुल जल्दी में है। बैठिए वर्मा साहब, अभी बैठिए। ये गया, वो आया, वो गया, ये आया।
5: आप भी डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं क्या?
4: शायद अंदर ही हैं।
5: अंदर हैं तो आ ही जाएंगे। माफ कीजिएगा, नाचीज को वर्मा कहते हैं
4: और मुझे कुमार।
5: ओ कुमार, आपके कितने साहबजादे हैं कुमार साहब?
4: जी अभी तक तो
5: समझ गया, समझ गया। तो आपका पहला तजुर्बा है?
4: जी आपका।
5: जी अपनी बात ही छोड़ दीजिए साहब, तजुर्बे चार, गिनती पांच।
4: पांच?
5: क्यों डर गए क्या? आपका कसूर नहीं है हुजूर, आपका कसूर नहीं है। जमाना फैमिली प्लानिंग का जो है, हम तो साहब लक की प्लानिंग कर रहे हैं।
4: लक की प्लानिंग?
5: जी हाँ साहब, लक की प्लानिंग। हमारे जोशी के मुताबिक इधर सातवें साहबजादे आए और उधर हम।
4: आपका लक खुला।
5: बेशक बेशक, हम तो पामिस्ट्री में पूरा विश्वास रखते हैं।
4: मुबारक हो साहब, लगता है अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
5: कैसी बात कर रहे हैं साहब, इंतजार तो करना ही पड़ेगा।
4: अजी साहब, हो सकता है छठे और सातवें साहबजादे एक ही साथ तशरीफ ले आए।
5: अब हाँ, वो हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है, ये भी हो सकता है।
4: गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
2: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।

0: पता नहीं साला बात करता है कि फिल्म के हीरो हीरोइन के मापिक टेलीफोन पर डुएट गाना गाता है। चार मरतबा ट्राई किया पन साला एवरी टाइम एंगेज।
1: किसको फोन करना है डॉक्टर साहब?
0: अपनी मिसेज को करता है, किसी और को नहीं।
1: वो क्या यहाँ नहीं है?
0: क्या मगजमारी! अरे वो इधर होएगा तो हम उसको फोन करेंगे। बाबा वो पिंजरा पोल मैटरनिटी होम में है।
1: अच्छा, तो आपने एक और मैटरनिटी होम खोल दिया?
0: ओ माय गॉड, क्या मगजमारी! अरे बाबा, पिंजरा पोल मैटरनिटी में वो डॉक्टर नहीं, मरीज है।
1: मरीज है? तभी हम जैसे आप भी रिजल्ट के चक्कर में है डॉक्टर साहब।
0: रिजल्ट? काय का रिजल्ट? कैसा रिजल्ट? अरे कौन सा रिजल्ट का चक्कर? हेलो, यस, डॉक्टर पालनावाला स्पीकिंग। व्हाट, मिसेस पालनावाला? वो इधर नहीं है। आप कौन है? आप प्रेसिडेंट मंडल की महिला है तो? अच्छा अच्छा, हाँ, आप महिला प्रेसिडेंट नहीं, महिला प्रेसिडेंट का तरफ से बोलता है। पहला आपका महिला मंडल से हमको क्या मतलब बाबा? क्या महिला मंडल का वाइफ तुम्हारा प्रेसिडेंट है? क्या साला मगजमारी है! ऐसा महिला मंडल का प्रेसिडेंट तुम्हारा वाइफ है? देन व्हाट? आज शाम महिला मंडल के जलसा में तुम लोग हमारा मिसेज पालना वाला का टॉक रखना मांगता है, पर काहे को बाबा? फैमिली प्लानिंग पर? अरे तुमको और कोई नहीं मिला? क्या बोला?

0: आने की हालत में नहीं। पन बाबा तुम्हारा मतलब क्या है? सबका सब किसी दूसरे मैटरनिटी होम की पेशेंट है। पन हम बोलता है अपनी लिस्ट में एक नाम और बढ़ा दो, मिसेस पालना वाला। फालतू मगज मारी ओइच महिला मंडल, अने महिला मंडल।
1: एक्सक्यूज मी डॉक्टर,
0: सबर करो नहीं जरा।

0: గుడ్ గాడ్, హలో డాక్టర్ గంజు, పాలనా వాలా హే. వాట్, ఐఎమ్ ఇంపేషెంట్. నో, నాట్ అట్ ఆల్ డాక్టర్. ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్ మీ ఇమీడియట్లీ. ఓకే ఓకే
1: డాక్టర్ సాహబ్,
0: ఆప్ అప్నా పేషెంట్ లే జాఓ, ఉస్కో ఫాల్స్ పెయిన్స్ థా.
1: వాట్,
0: హా దో వీక్ బాడ్ ఆనే కా.
1: అచ్చా డాక్టర్, థ్యాంక్ యూ.
0: और मिस्टर वर्मा
2: जी,
0: हम तुमको लास्ट टाइम बोला था तुम अपनी वाइफ का मर्डर कर रहा है. मर्डर? अरे बाबा, उसको ब्लड प्रेशर है, वो वीक है, और तुमको पॉपुलेशन.
2: डॉक्टर साहब, बात ये है कि देखिए,
0: क्या मगजमारी है
2: वो डॉक्टर साहब? पामिस्ट.
0: पामिस्ट?
2: हाँ, पामिस्ट. वो लक लक
0: पामिस्ट अने लक पामिस्ट अने लक.
2: डॉक्टर साहब, वो तकदीर तकदीर पामिस्ट बोला.
0: ओ डैम पामिस्ट. देखो, तुम अपना पेशेंट ले जाओ, पामिस्ट के पास ले जाओ. अभी अने इजी भगत లక్ అని తగ్డీ తగ్డీ అని పామిస్ట్ అని మగజ్ మారి. హలో డాక్టర్, పాలనా వాలా? అరే బాబా, బండూక్ వాలా నహీ, పాలనా వాలా. వాట్, మేజర్ సింగ్? రాంగ్ నంబర్.
3: డాక్టర్, డాక్టర్ సాహబ్ వో ఆ రహీ హై.
0: కాహేంగా తో అందర్ భేజ్ దేనే కా.
2: బౌండర్ సాహబ్, आज डॉक्टर साहब का दिमाग बड़ा गर्म लगता है.
3: वो आई और दिमाग ठंडा, बिल्कुल ठंडा, बर्फ से भी ठंडा.
2: वो कौन?
3: अब बोलो, तुमको इतना भी नहीं मालूम?
2: नहीं.
3: वो परिस्तान की हूर है, मेरे मन की रानी है, दिल को घायल करने का मसाला है. रोजी उसका नाम है, गाल पे तिल पहचान है. रोजी
2: अच्छा.
3: अरे भाग जाग गई इस मैटरनिटी होम के.
2: कैसे?
3: अरे मेरे ब्रादर डॉक्टर मैम साहब पिंजरा पोल में, मैडम मिरांडा नर्स बीमार.
2: अच्छा.
3: आया धनवंती का आधी भाग गया. वो गई काम से. अब बताओ, एक अदद डॉक्टर, एक अदद कंपाउंडर और एक अदद बुढ़ी आया से कहीं मैटरनिटी होम चल सकता है?
2: नहीं,
3: बिल्कुल नहीं.
2: नहीं.
3: लेकिन नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर अब आ रहा है.
2: यार किसी तरह डॉक्टर साहब का गुस्सा ठंडा करो तुम बस.
3: अभी तुम जाओ.
2: अच्छा.
3: एक घंटे बाद आना, मौसम बदल जाएगा.
2: अच्छा अच्छा, तो मैं जाता हूँ, एक घंटे के बाद आता हूँ.
0: जोसेफ?
4: यस डॉक्टर.
0: ओ आई नहीं?
4: जी नहीं, फिर जाऊं.
0: क्या मगज मारी किलर पे नहीं जाने का? उफ, आज तो माइंड ही चाउट हो गया.
4: वो आएगी, इन हो जाएगा.
0: ओ शट अप.

0: मारेगा, तेरे को छोड़ेगा नहीं, हम बहुत खराब आदमी
1: बाहर।
0: तो तुम फाइनल बोले था हमारा पेशेंट एडमिट नहीं करना।
1: अरे बोला ना नहीं करेगा।
0: ठीक है, ठीक बात है, हम इधर स्ट्राइक करेगा, एडमिट नहीं करेगा तो स्ट्राइक करेगा। अभी हमारा वाइफ आ जाएगा,
1: चलो
0: सिक्स डॉक्टर आ जाएगा, हम घेराव करेगा। डॉक्टर इधर, हम घेराव, हम जाएगा,
1: चलो बाहर चलो, चलो
2: हेलो, ये इस डॉक्टर पालना वाला। ओ डॉक्टर गंजू, कांग्रेचुलेशन फॉर व्हाट? ओ बाबा या बेबी? क्या दोनों, बाबा यानी बेबी, बेबी यानी बाबा? माय गॉड, माय गॉड, बाबा यानी बेबी, बेबी यानी बाबा। जोरदार पानी पानी लो, बेबी यानी बाबा दोनों, बाबा बाबा बाबा दोनों, जोरदार पानी लो।

रिजल्ट का चक्कर। हवा महल में अभी आपने हरीश दीक्षित की लिखी हुई ये नाटिका सुनी। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए वजीर फिल्म का गीत। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में तर्ज बनाई है शांतनु मोइत्रा ने, बोल विधु विनोद चोपड़ा के।

अंतरा मित्रा और श्रीराम को आप सुनिए 1920 लंदन फिल्म में। बोली के हैं प्रशांत इंगोले ने, संगीत कौशिक और आकाश का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आइए सुनते हैं मनोज मुंतशिर का लिखा गीत राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में, आवाज सुबिन नौटियाल की फिल्म का नाम काबिल।

ये थे जुबिन नौटियाल फिल्म काबिल में। अब सुनिए जसलीन रॉयल, हर्षदीप कौर और सिद्धार्थ महादेवन को फिल्म बार बार देखो में, बोल आदित्य शर्मा के संगीत जसलीन रॉयल का, और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का

0: समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की, राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: 2 दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्य और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
4: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
5: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्री

0: मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले पांच वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अड़िग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर

0: के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल यादव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस VCK IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का कानपुर केंद्र 103.7 FM पर।

शुरू हो रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम। जी हाँ, आपकी फरमाइश। रात की इस खूबसूरत चादर तले तारों की हल्की चमक और हवाओं की नरम सरगोशियों के साथ आपका दिल से स्वागत कर रही हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो हम सफर कौसर। आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश प्रोग्राम, एक ऐसा सुरीला सफर जहां आपके द्वारा भेजे गए ईमेल्स और खतों में भेजे गए जज्बात बनते हैं गीतों की मिठास और यादों की महक। दिन भर की भागदौड़ के बाद ये रात कुछ पल अपने लिए चुरा लेने का नाम है। कुछ बातें दिल की, कुछ यादें अपनों की और कुछ नगमे जो सीधे रूह को छू जाएं। और कुछ फरमाइशें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनी नहीं बल्कि महसूस की जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मोहब्बत, यादों और खूबसूरत नगमों से सजी ये शाम, जी हाँ, जिसका नाम है आपकी फरमाइश। तो सबसे पहले आपके मोबाइल एंड रेडियो सेट पर आ रहा है गाना सीआईडी फिल्म का, और इसे सुनने के लिए हमारे पास जो ईमेल आई है वो है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। साथ ही इसी गाने के लिए हमारे पास ये जो पत्र आया है ये आया है मूसा नगर से माजदा बेगम, एम नईम, रुखसाना, खालिक अली हैदर, सलमान अंसारी, फहीम, फामनी बेगम और अकबरपुर से इकरा बेगम और अनीसा बेगम। तो चलिए सुनते हैं ये गाना जिसे हमने लिया है सीआईडी फिल्म से।

जी हाँ, लेके पहला पहला प्यार और अपने श्रोताओं के लिए दिल से प्यार लेके बिल्कुल ये शुरू हो चुका है प्रोग्राम हमारा आपकी फरमाइश, जिसमें आपके द्वारा भेजी गई ईमेल्स और खतों को शामिल करते हैं और सुनवाते हैं आपके द्वारा की गई फरमाइश पर आपकी पसंद के गाने। और इस वक्त एक बहुत ही प्यारी सी ईमेल हमारे स्क्रीन पर दिख रही है, ये हमें भेजी है सिद्धि मिश्रा ने। इन्होंने लिखा है, मेरी नानी की शादी की सालगिरह है और इस ख़ास अवसर पर मैं उनके लिए एक गीत समर्पित करना चाहती हूँ, तो कृपया ये गीत मुझे सुनवा दें। सिद्धि, सबसे पहले आपकी नानी और आपके नाना को बहुत बहुत शुभकामनाएँ उनकी शादी की सालगिरह की। और इन्होंने लिखा है कि गीत उनके लिए अपने कार्यक्रम में बजाएं, ये दिन हमारे परिवार के लिए बहुत ख़ास है और आपका ये सहयोग इसे और यादगार बना देगा। जी, हमारा सहयोग यादगार बना देगा बिल्कुल। हम बहुत अच्छे से उनको दिल से मुबारकबाद देते हैं और उनके लिए आपने जो फरमाइश किया है गाना वो बिल्कुल प्ले करेंगे। और इन्होंने लिखा है, मेरी नानी का नाम है सुमन शुक्ला और नाना इनके उनके नाना का नाम है दया शंकर शुक्ला, तो आप दोनों को शादी की जो सालगिरह है वो बहुत बहुत मुबारक हो। आपको ये गीत हम सुनवाएंगे जो आपकी जो नातिन है सिद्धि मिश्रा उसकी तरफ से। साथ ही थोड़े से नाम और ले लेते हैं इसी गाने में, ये हैं कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिए राधिका

का और तन्मय गजबिये, साथ ही ये हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू, डुमराओ बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद और परमानंद, सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी और आसमा खातून, एक मेल और लेंगे ये, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल की ये ईमेल है। और अब सुनवाने जा रहे हैं वो गाना जो सिद्धि मिश्रा ने अपने नाना नानी को समर्पित किया है, डेडिकेट किया है। बहुत ही खूबसूरत सा ये सॉन्ग है नदिया के पार फिल्म से।

जब तक पूरे ना हो फेरे सात। जी हाँ, ये सात फेरों का जो बंधन होता है ना, ये बहुत ही मजबूत होता है। और सच में जीवन भर अगर इसे सही से निभाया जाए तो बड़ा ही खूबसूरत ये साथ बन जाता है दो लोगों का, जो कहलाता है जन्म जन्म का साथ। फिलहाल आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को लेकर आज मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो हम सफर कौसर। अगला खत ये हमारे पास आया है लालपुर शिवराजपुर देवीन तालाब से। टीएस चंदेल, खुशबू चंदेल, रौनक कार्तिक, निष्ठा सिंह, दीपू सिंह चंदेल, भारती सिंह और पूरा चंदेल परिवार, और आप सभी सुनना चाहते हैं ये गाना जिसे हमने लिया है दुल्हन वही जो पिया मन भाए। इसका बहुत ही खूबसूरत सा ये गाना है, हेमलता का गाया हुआ। और चलिए इसी के साथ कुछ और नाम ले लेते हैं। ये हैं स्नेहा सोनी, इन्होंने लिखा है कश्ती बहती है किनारे की तलाश में, लोग मिलते हैं प्यार की आस में, हम रोज़ मिलते नहीं आपसे मगर कुछ वक्त ज़रूर बताते हैं आपकी याद में। तो इन्होंने लिखा है कि कौसर मैडम को मेरा प्यार भरा सलाम आदाब। कबूलो जी, बहुत बहुत आपको भी हमारा

सलाम आदाब सभी कुछ। इन्होंने लिखा है कि कल मैंने आपको दिल से याद किया और आज देखिए आप आ गई। जी जो दिल से याद करते हैं मैं बिल्कुल मैं हाजिर हो जाती हूँ। और इन्होंने आगे लिखा है कि आपका जो गाने तराने कार्यक्रम आज का था वो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छी थीम पर आपने कार्यक्रम प्रस्तुत किया और बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमारी यही कोशिश रहती है कि जो भी हम यहाँ पर पेश करें प्रस्तुत करें वो आप सबके दिल को छू जाए। फिलहाल आगे की ईमेल लेते हैं। ये है सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बुढ़ाना साथ में। ये हैं इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो, आपकी ईमेल भी शामिल हो चुकी है। इसके बाद शामिल कर रहे हैं ये ईमेल होली चौक उत्तम नगर से आई है जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन दीपांशु खोरवाल की, इनकी ईमेल भी शामिल हो चुकी है। इसके साथ है रोहिदास चौक पंढरपुर शहर से प्रशांत सिंडे, यशराज, सुनीता, ऋषि और कृष्णा घोटके। साथ ही ये ईमेल एक और आई है कौसर जी आदाब, जी आपको भी आदाब। ये हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद और ये ईमेल आई है बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत की। और ये जो उत्तम कुमार भगत सिंह जी थे ये पाकुड़ झारखंड से इन्होंने ईमेल भेजी है। और एक हमारे पास एक और ख़त है ये किसी भी गाने में शामिल करने के लिए, आदर्श नगर मालोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ शाइना और निवान शर्मा का। तो ये सारे ख़त और ईमेल्स हो चुकी हैं शामिल। और अब गाना आने वाला है दुल्हन वही जो पिया मन भाई का, हेमलता जी का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग।

जी हाँ, हर एक लड़की का एक सपना होता है कि उसके सपनों का राजकुमार एक दिन आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन बस वही होता है कि उस लड़की को एक और घर संभालना होता है, और अगर वहाँ पर सारे लोग प्यार से एक साथ रहते हैं तो बस वो घर स्वर्ग बन जाता है और उस लड़की का सपना वो एकदम साकार हो चुका होता है। बस ऐसा ही कुछ तो इस गाने में भी था, है ना? चलिए, प्रोग्राम चल रहा है आपकी फरमाइश, और इस प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो हम सफ़र कौसर, और उठाती हूँ एक और ख़त। ये आया है तिवारी घाट कानपुर से, इसे भेजा है श्याम लाल बिट्टन, अनीता, निशा वड़क्के, अनन्या, नैना, रवि, अभिजीत सिंह सांगा ने। और साथ ही ये हमारे पास ईमेल्स आई हैं, और बता दें ये किस गीत के लिए ये फरमाइश है, ये है कुली फिल्म के गीत के लिए। और ये एक और ईमेल हमारे पास आई है गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइन हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब हसन, और आपकी ईमेल शामिल हो गई है। बस खुश हो जाइए जिनकी जिनकी ईमेल शामिल होती जा रही है। साथ ही ये हैं खंडवा रोड सनावत से शहबाज, अरबाज, फरहाज, फरदीन, समीर, मोइन शेख, और साथ ही खंडवा से योगेश गुजराती और रेखा गुजराती। ये हैं गंज डुंडवारा से शमशुल, कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान और कलीम अंसारी। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन, दीपांशु खोरवाल। और इसके साथ लेते हैं एक ये ईमेल, ये हमें भेजी है गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान की ये ईमेल जो हमने शामिल कर ली है इस प्रोग्राम में। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ और मोहम्मद कलीम अंसारी। साथ ही एक ईमेल और इसी गाने के लिए, ये हैं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुनिशा शबिश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी की। और इन्होंने कुछ लिखा है, भाई वो भी पढ़ दें। इन्होंने लिखा है कि आपकी फरमाइश का कार्यक्रम प्रस्तुत करता छोटी बहन कौसर जी को पुरखलूस आदाब। जी आपको भी हमारा पुरखलूस आदाब, आज के कार्यक्रम में हमारी फरमाइश भी शामिल कर लें। जी बिल्कुल, आपने कहा और हमने शामिल कर ली। और बस अब गाना सुनिए, बहुत अच्छा सा ये गाना है, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, और बड़े ही अच्छे मौके पर ये फरमाइश आई है क्योंकि महीना भी चल रहा है हज का और हाजी लोग जा चुके हैं हज करने, और बस हज पूरा होने वाला है उनका। तो बस इसी मौके पर सुनिए ये बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग आप सभी की फरमाइश पर।

जी हाँ, दुआओं की ज़रूरत तो सभी को होती है, और सच में मदीने वाले से मेरा सलाम कहना शायद सभी के दिल का आज ये पैगाम हो। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आप सुनवाते हैं मेरे हुजूर फिल्म का गाना, और जिसकी फरमाइश हमें भेजी है दीदार रेडियो श्रोता संघ से बिलराम गेट कासगंज से, एम असलम सैफी, जैबुन निशा बेगम, अकरम सैफी और आबाद खान ने। साथ ही करणवीर हाउस भुचो कैंचियां बटिंडा पंजाब से, प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन और अभिजोत, आपकी ईमेल शामिल हो चुकी है। यह है मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस भाई। साथ ही चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा, इन्होंने कहा हमें भी शामिल कर लीजिए। जी कहने भर की देर थी, लीजिए, शामिल हो गए आप सभी। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर, छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, इन्होंने लिखा है रिस्पेक्टेड होस्ट जी, आप हमें किसी भी सदाबहार गीत के साथ प्रोग्राम में शामिल करें। जी बिल्कुल, आप भी शामिल हो चुके हैं प्रोग्राम में। पुराना तालाब डुमराव से वली उल्ला अंसारी, सोनम वली और अस्मा वली, साथ ही बक्सर से फातिमा राज वली अंसारी।

दुर्गा गालोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू और बब्बू। और इस गाने के लिए एक और ईमेल लेंगे, ये हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहरा जहां। और बस गाना आ रहा है मेरे हुजूर फिल्म का आप सभी के लिए।

खूबसूरत सा ये गीत था। मोहम्मद रफी की आवाज थी। और इसी के साथ एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपके लिए आ रहा है, लेकिन अब की आवाज है एसपी बाला सुब्रमण्यम की। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। और इसे सुनने के लिए जो हमारे पास ये लेटर आया है, ये है जामरूल ताउर्धापुर से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन संजय, आशीष पृथ्वीराज, कुमारी साध्वी और परमड़ी, साथ ही गणेश जोशी जी, इनका खत आया था। और आप पढ़ते हैं ईमेल्स। ये हैं मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, रशीद वारसी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, साथ ही सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी, और आप सभी की ईमेल हो चुकी है शामिल।

जैन मंदिर वाली गली कुरावली से। ये हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी। इन्होंने लिखा है कि मोहतरमा कौसर जी, आपको हमारा आदाब जी, आपको भी हमारा आदाब, दुआ करते हैं आप हमेशा खुश रहें और खैरियत से रहें जी। बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे भी दिल से हमारे सभी श्रोताओं के लिए यही दुआ है। छोटी बलिया तालुका कर्जत से अहमद भाई दुखनी, सदफ आरजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद, कापसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से, आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा और आशु अहमद। मुकाम पोस्ट फूल चिचौली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलाड़ी, सुमैया, सुबान, सलमा, मुमताज़, दिलशाद, नसीर, बानू बी और बादशाह मुलाड़ी और पूरा मुलाड़ी परिवार, ये भी शामिल होना चाहता था हमारे प्रोग्राम में और इनकी ईमेल हमने शामिल कर ली है। ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया और निशा कठेरिया, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू और पूरा कठेरिया परिवार है। और इन्होंने कहा है कि आपकी फरमाइश कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता बहन कौसर जी को सप्रेम नमस्कार जी। आपको भी हमारा नमस्कार, हम आपका प्रोग्राम बराबर सुनते हैं, बहुत ही पसंद आता है आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया ये कार्यक्रम और आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रोग्राम सुनते हैं और पसंद करते हैं। सभी श्रोता ऐसे ही जुड़े रहें हमेशा हमारे साथ। ये हैं रघुवीर नगर से दिलावर खान, असीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। एक और ईमेल ले रहे हैं, ये हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित की। और बस अब गाना आ रहा है मैंने प्यार किया फिल्म से, बहुत ही खूबसूरत सा एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में।

मैंने प्यार किया फिल्म से ये भी आपने गीत सुना, और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं खूबसूरत फिल्म का बहुत ही खूबसूरत सा गाना, जिसे गाया है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये पत्र आया है, छत्री तालाब अमरावती से साध नारायणी गुप्ता, कविता गुप्ता, नेहा गुप्ता और कोमल गुप्ता का। साथ ही ईमेल जो हमारे पास आई है, यह है मोदी चौक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी और कमल किशोर शाह की। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर, आपकी

ईमेल भी हमारे आपकी फरमाइश प्रोग्राम में शामिल हो चुकी है। ये हैं रूपपुर चंदेला से शैलेश कुमार और टाइगर शर्मा, इन्होंने लिखा है, जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए कभी भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाइयों से बाहर निकालेगी। कौसर मैम को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसी भी गीत में मेरा मेल शामिल कर लीजिए, जो भी आप प्यार से सुना दोगी हम वही गाना सुन लेंगे। तो बिल्कुल चलिए, आपको बहुत ही प्यार से सुनवा रहे हैं खूबसूरत मूवी का ये बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग।

खूबसूरत फिल्म का बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत अभी आपने सुना। और अब एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपके लिए लेकर आ रहे हैं, राजा जानी फिल्म से इसे हमने लिया है। कस्बा अमरोधा से इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये खत आया है। अब्दुल जब्बार, राइन, आरिफ, तारिक, आकिब, आयशा, आयजा, आरफा, शहीद अनवर, हमजा राइन, साथी संदीप राठौर और हंजला राइन, ग्रीन रोड अकबरपुर से अमीर बाबू, उमाज राइन और रेशमा बेगम और इनके साथ जब्बार मोहम्मद भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। वड़िंगखेड़ा पंजाब से ये हमारे पास ईमेल भेजी है मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने। पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी और बेबी अरीबा हबीबा, आपकी ईमेल भी शामिल हो गई है हमारे आपकी फरमाइश प्रोग्राम में। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर जी, आपकी ईमेल भी शामिल हो चुकी है। इसी गीत के लिए एक और ईमेल लेते हैं। ये हैं मेहर पटेल कॉलोनी राजकोट से अजीता पॉल, हेमा और प्रमिला पॉल, कबीरनगर वाराणसी से देव जाटो बेलदार, शंकर बेलदार और सरिता बेलदार, साथ ही पूजा टुनटुन बेलदार। और बस अब गाना आ रहा है राजा जानी मूवी का, बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है ये।

जी हाँ आई रात सुहानी और सच में बड़ा ही सुहावना मौसम हो गया है, क्योंकि गर्मी ने जो बहुत ही तपिश फैला कर रखी थी, हवाओं ने थोड़ा सा उसे पीछे कर दिया है और मौसम सुहावना हो चुका है। फिलहाल इस सुहानी सी रात में हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है आपकी फरमाइश, जो कि अब पहुंच चुका है अपने अंतिम पड़ाव पर। और अब गाना आ रहा है हमराज मूवी का, और जिसे सुनने के लिए हमारे पास ये खत आया है नवाबगंज से। अड्डी भाई, गुड्डू, माजदा बेगम, शाहीन बेगम, सिमरन, इकरा, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद फैज़, मोहम्मद साकिब और मोहम्मद असद का। साथ ही ये ईमेल आई है सरगुजा मेन पार्ट से विनोद थापा, पूजा रानी, संदीप थापा और डॉली थापा की। डोंडी लोहारा से सुमित मोगा, देव मोगा, राधिका और कबीर मोगा भी शामिल हो चुके हैं इस प्रोग्राम में। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। साथ ही छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशत परवीन, मोहम्मद हसनैन, रजा और गौसिया फातिमा। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। जेल रोड रायगढ़ से उमा रानी अजनबी, बेबी जोई अजनबी और डॉली बेलदार। छत्तीसगढ़ से प्रभा रानी गौड़िया। और बस इस प्रोग्राम की ये आखिरी ईमेल शामिल कर रही हूँ शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। तो ये थी हमारी आज की आखिरी मेल, और अब प्ले करने जा रही हूँ इस प्रोग्राम का आखिरी नगमा।

0: अपने रेडियो हम सफर कौसर को इजाजत, लेकिन सुनते रहिए आप विविध भारती के कानपुर केंद्र को, क्योंकि अगला प्रोग्राम अब आपके लिए आएगा छाया गीत, जिसके लिए आपको करना होगा बस थोड़ा सा इंतजार।
1: सुनिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी फरमाइश आ रहा है अब एक नए वक्त पर। अब आप अपनी फरमाइशें और सदाबहार गाने एंजॉय करें हर रात 9 बजे से 10 बजे तक। जी हाँ, रात 9 से 10 बजे तक सिर्फ 103.7 FM विविध भारती कानपुर पर। तो लिख भेजिए हमें अपनी रिक्वेस्ट, अपनी फरमाइश। लिखिए अपना नाम व पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं आकाशवाणी कानपुर के नाम से। हमारा टेक्स्ट हैंडल है @AIR कानपुर और मेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com। अपनी फरमाइशें आप हमें चिट्ठियों के माध्यम से भी भेज सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता नोट करें, द्वारा केंद्र निदेशक विविध भारती सेवा आकाशवाणी कानपुर 208002। तो जल्दी से लिख भेजिए अपना फरमाइशी गाना इसी पते पर।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
3: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
4: इसका सलूशन?
3: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
4: नेचुरल है।
3: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

श्रोताओं नमस्कार। छाया गीत के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। बचपन का साथ छूटा तो मन में एक आस ने घेरा डाला, कोई आएगा दूर देश से लेकर सपनों का उजियारा। वो आएगा तो संग लाएगा एक अनोखा जादू, उसकी नजरों के सामने न जाने कैसे होगा अपने दिल पर काबू। झूम उठेंगे रात दिन खुशियां आंखों से छलके, न खो जाएं कहीं मुझसे मेरे ये सुहाने सपने। ये सोचकर ही तो बंद कर ली हैं खुशी से अपने पलकें।

देखो ना, वो दूर से बहती आई हवा लिए आई है सौंधी खुशबू उनके कदमों की। कभी सुनती हूँ आहट तो कभी गूंजती है मन में एक धुन। लगता है देखे बिना ही मेरे मन ने उन्हें ही लिया है चुन। सखियां सहेलियां अब बनाने लगी हैं बातें, इधर मैंने भी हथेलियों पर सजा ली हैं सारी रातें। पर इस खजाने में बची हैं चंद रात और मुट्ठी भर सपना। तुम आ जाओ तो ले जाओ साथ इन्हें बनाकर दिल से अपना।

आखिर हुआ इंतजार खत्म और आ ही गया वो चिचोर। वो देखता है गांव की गलियां और हम निहारें बस उसकी ओर। कभी पूछते हैं उसका हाल तो कभी टटोलते हैं अपने जी को। क्या है ये वही देखा था सपनों में इसी को? होश अब दिल की पनाह मांगते हैं, जज्बात मेरे सपनों की दहलीज लांघते हैं।

0: छाया गीत में परदेसी दिल की बातें जारी रहेंगी एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
2: इसका सोल्यूशन
1: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
2: नेचुरल है।
1: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। हुआ वही जिसका ना अंदेशा था ना खबर, क्या कभी परदेसी बसे हैं इस दिल के नगर। परदेसी का ना कोई ठौर ना ठिकाना, दो पल यहाँ रुकना और अगले पल दूसरे छोर तक जाना। कब हुआ है आसान ये दिल का लगाना, दिल के इस खेल का पड़ेगा अब आंखों को हिसाब चुकाना। भीगती पलकें भीगते जज्बात, क्या मुझ जैसे ही होंगे उसके भी हालात।

दिल का ये मेल कोई आसान काम नहीं, जिसने दिया दुख लेते हैं उसका नाम ही। भीगे आंचल, बिखरा काजल, सूखे होंठ, सामने तू है सब कुछ, अब किससे कैसी ओट। छुप पाया है क्या चांद चांदनी से कभी, हमारे होंठों पर भी तो सजे हैं अब तक गीत वही। वो हो दूर तो क्या, मेरी हर धड़कन पुकारती है बस उसका ही नाम, सुबह शाम दिन तमाम।

उस परदेसी ने किया है ऐसा जुल्म कि हम रहे ना हम। याद में उसकी कभी मनाए गम तो कभी मुस्कुराहट का आलम। उसे याद करके जितने आंसू बहाए उसकी ही याद में उतने ही गीत भी गाए। शायद यही तो है प्यार का सर कि जिसके लिए बेचैन होते हैं उसको ही याद करके चैन से सोते हैं। प्यार की इस उधेड़बुन में हम तो उसकी ही धुन में खोते हैं।

0: छाया गीत में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अपने दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
3: इसका सलूशन?
2: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
3: नेचुरल है।
2: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जाए रात।
1: ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र 103.7 FM पर। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। हमारा आज का प्रसारण अब यहीं पर समाप्त होता है। कल प्रातः 5:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि।

ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र 103.7 FM पर। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। हमारा आज का प्रसारण अब यहीं पर समाप्त होता है। कल प्रातः 5:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि।